0: बातें और ढेर सारे गाने आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर, नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर, एफएम रेनबो पर।
1: सिटी ऑफ जॉय कोलकाता और उस कोलकाता के दी रियल रेडियो 107 एफएम रेनबो पर ढेर सारा प्यार और अपनेपन के साथ हाजिर है आपकी रेडियो दोस्त सुलक्षणा पर्वत लेकर आपका ही पसंदीदा मॉर्निंग शो नॉनस्टॉप गपशप विद योर आरजे फ्रेंड सुलक्षणा पर्वत। और ऐसा है दोस्तों कि हर रोज आप जानते हैं कोई ना कोई एक विषय या दो विषय पर हम बातें करते ही हैं और उसके अलावा नॉनस्टॉप गपशप में आपके लिए बहुत कुछ रहता है। एक तो आज के दिन में ऐतिहासिक जो हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है आज के दिवस का उससे संबंधित कुछ बातें चर्चा में लाऊंगी और उसके अलावा एक चुटकी नुस्खा ये भी तो रहता है आपके लिए और मौसम से संबंधित जानकारी भी देते हैं। तो फिलहाल क्यों ना हम शुरुआत करें उस गीत के साथ जिसे हमने लिया है फिल्म तेरे नाम से, तुमसे मिलना अच्छा लगता है। उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में इस गीत से आगाज करना चाहूंगी आज के कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप का।

वेदर संबंधित सूचना है, और ऐसा है दोस्तों कि जलपाईगुड़ी कूचबिहार अलीपुरद्वार के लिए ऑरेंज वार्निंग है। मध्यम गरज और बिजली के साथ तेज बारिश और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तेज हवा चलने की संभावना है अगले 2-3 घंटों में 8:50 से आगे। और जलपाईगुड़ी कूचबिहार अलीपुरद्वार जिलों के कुछ हिस्सों पर असर पड़ने की बहुत संभावना है।

एक और मौसम संबंधित सूचना है और वो है हल्की से मध्यम आंधी और बिजली कड़कने के साथ हल्की से मध्यम बारिश और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तेज हवा चलेगी अगले 2-3 घंटों में। कालिंपोंग जिले के कुछ हिस्सों पर असर पड़ने की बहुत संभावना है। मौसम संबंधी सूचना समाप्त हुई।

सुना उसे, हमने लिया था फिल्म गुरु से श्रेया घोषाल और उदय मजुमदार की आवाज में इस गीत को सुना, जिसे बड़ी खूबसूरती से कलमबद्ध किया था गुलजार ने और संगीतबद्ध किया है ए आर रहमान ने। और जैसा कि जानते हैं कि हर रोज नॉन स्टॉप गपशप में कोई ना कोई विषय होता है जिस पर हम ढेर सारी बातें करते हैं, और आज जिस विषय पर, या कह लें कि जो विषय लेकर आई हूं, उस विषय का नाम है डिजिटल डिटॉक्स। तो ये डिजिटल डिटॉक्स असल में होता क्या है? बहुत सारे लोग ऐसे होंगे हमारे श्रोता जो ये जानना चाहेंगे कि इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब है कि कुछ समय के लिए स्मार्टफोन, सोशल मीडिया और स्क्रीन से पूरी तरह दूरी बनाना। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में ये इसलिए बेहद जरूरी हो गया है क्योंकि लगातार स्क्रीन से तनाव, अनिद्रा यानी इंसोम्निया और आंखों पर बुरा असर पड़ता है। डिजिटल डिटॉक्स करने के फायदे बहुत सारे हैं, तो आप भी तैयार हो जाइए बताने के लिए कि डिजिटल डिटॉक्स कैसे किया जाए, और इसके फायदे पर भी रोशनी डालेंगे आप, क्योंकि इसके फायदे अनगिनत हैं। और फिलहाल आप सभी के लिए अगला गीत मीत ब्रदर्स की आवाज में।

सभी महत्वपूर्ण घटनाओं, त्रासदियों और अंतर्राष्ट्रीय दिवसों के लिए दर्ज है। प्लासी का युद्ध 1757 में भारत के इतिहास में 23 जून का दिन एक निर्णायक मोड़ था। इसी दिन रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच प्लासी की लड़ाई हुई थी। इस युद्ध में नवाब की हार हुई और जिसने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस की शुरुआत 1894 में आज ही के दिन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन हुआ था।

0: आज के दिन। स्टूडियो की घड़ी में समय उछला है 10:21:54 और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप विद योर आरजे फ्रेंड सुलक्षणा पर्वत। और अब अगला गाना आप सभी के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि महीने के आखिरी रविवार 11 बजे से मन की बात सुनना ना भूलिएगा।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

म्यूजिकली योर्स पर इस वक्त आप सुन रहे हैं आपका ही फेवरेट शो मॉर्निंग शो नॉन स्टॉप गपशप विद योर आरजी फ्रेंड सुलक्षणा पर्वत। और ऐसा है दोस्तों कि आज हम बात कर रहे हैं डिजिटल डिटॉक्स पर, यानी कि बहुत ज़रूरी है कि हम अपना स्क्रीन टाइम जो है उसकी एक लिमिटेशन सेट करें और ये जो गैजेट्स हैं इससे थोड़े समय के लिए जो है हम दूरी बरतें। और फिलहाल अगला गाना आप सभी के लिए फिल्म बजरंगी भाईजान से। और क्या है ना कि आजकल सेल्फी का दौर है, तो जहां देखो लोग मस्त रहते हैं सेल्फी लेने में, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन हाँ जब भी आप सेल्फी ले ये जरूर देखें कि हाँ आप किसी खतरे में ना पड़ जाएं, ऐसे जगह पे ना ले जहां आपकी जान जोखिम में पड़े।

म्यूजिकली योर्स पर इस वक्त आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो नॉन स्टॉप गपशप विद आरजे फ्रेंड्स सुलक्षणा पर्वत। और ऐसा है कि हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे जुड़े हैं हमारे एक श्रोता झारखंड रांची से, और नाम है उनका भूषण भारती। तो नमस्कार भारती जी। हेलो, नमस्कार नमस्कार।

हेलो, हो सकता है किसी कारणवश जो है लाइन डिस्कनेक्ट हो गया हो। कोई बात नहीं, फिर से आप कोशिश कीजिएगा तो जरूर लाइन मिल जाएगी। लेकिन फिलहाल रुक करते हैं हम अगले गीत की ओर।

0: हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे शायद कोई हमारे श्रोता जुड़े हैं, देखते हैं कि कौन है। हेलो।
1: हाँ,
0: नमस्कार।
1: नमस्कार नमस्कार,
0: कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं भूषण भारती, झारखंड रांची से बोल रहा हूँ।
0: आपका बहुत बहुत स्वागत है भूषण जी, कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप। और ऐसा है कि आज जिस विषय पे हम बात कर रहे हैं वो है डिजिटल डिटॉक्स, और मैं जरूर चाहूंगी कि आप अपना ओपिनियन जो है वो शेयर करें कि आज के दौर में डिजिटल डिटॉक्स क्यों जरूरी होने लगा है।
1: मैम, आजकल डिजिटल डिटॉक्स बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि बहुत लोगों का कुछ कुछ आदत गंभीर होते जा रहे हैं और कुछ गंभीर परिणाम भी इसका आने लगा है, जैसे कुछ अपने में भी कुछ बच्चों में भी। तो इस जो गंभीर समस्या आ रही है उसको तो कुछ निदान होना चाहिए। और जैसे फोन ज्यादा देखना, कुछ घूमना ज्यादा, टीवी ज्यादा देखना, छोटी छोटी तो कम समय देने से तो ठीक है, लेकिन इस पर कहीं कहीं लोग ज्यादा समय देते हैं।
0: अच्छा, आपको लगता है कि इस ज्यादा स्क्रीन टाइम के वजह से जो बच्चे हैं या फिर युवा हैं या फिर हर वर्ग के लोग हैं, वो फिजिकल एक्टिविटी उनकी कहीं ना कहीं कम होने लगी है?
1: जी, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि आजकल स्क्रीन के चलते बहुत लोगों का फिजिकल एक्टिविटी कम हो गया है, जैसे बाजार जाना, कुछ अपने कुछ रिलेटिव से मिलना, कुछ दोस्तों से मिलना, कुछ अपना बात शेयर करना लगभग।
0: और ये जो है ना, आउटडोर गेम्स खेलना भी लोग कम कर दिए हैं, क्योंकि व्यस्त रहते हैं मोबाइल लेकर।
1: बस हाँ, सब मोबाइल लेके बैठ जाते हैं अपना।
0: अच्छा, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है, प्रतीत होता है कि हमारी दुनिया जो है सिमट कर एक मोबाइल में आ चुकी है?
1: जी मैडम, कभी कभी तो महसूस ये चीज होता है कि दुनिया लगता है कि सिर्फ मोबाइल में, क्योंकि गूगल है, सारा कुछ अवेलेबल वो भी प्रोवाइड करता है, लेकिन इससे अच्छा है कि अपने परिवेश से अगर हम लोग वाकिफ हों तो ज्यादा बेहतर है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण बात है, और इस बात से बहुत सारे लोग वाकिफ होंगे और जानते भी होंगे कि हाँ ये जरूरी है। तो आप क्या सुझाव देना चाहते हैं कि किस तरीके से हम डिजिटली जो है डिटॉक्स करें, डिजिटल डिटॉक्स को किस तरीके से हम कारगर करें अपने रोजमर्रा के जिंदगी में?
1: इसको डिटॉक्स को कम करने का तो कुछ सरल उपाय है, जैसे अपने दोस्तों से थोड़ा सा मिलना जुलना, बात करना, थोड़ा बाजार जाना, घर का कुछ काम में हाथ बटाना, समय बटाना।
0: और ऐसा ना हो कि हम किसी ना किसी ऐप को जो है उसको जो है उसमें एक लिमिटेड टाइम जो है उस हिसाब से हम उसे सेट कर दे, है ना, कि उस टाइम के बाहर वो ऐप आपका चालू ही नहीं होगा 24 घंटे में, है ना। और कुछ
1: डिटॉक्स का बहुत अच्छा उपाय है कि मैं इस तरह कुछ लॉक कर दूं, चाहे सिस्टम को लॉक करने से लॉक खोला जा सकता है, लेकिन अपने विल पावर बढ़ाना होगा।
0: बिल्कुल, अपना विल पावर बढ़ाना होगा कि हाँ अगर मैं सोचता हूँ कि मुझे 24 घंटे में 8 घंटे सोना है और कम से कम 2-3 घंटे मुझे मोबाइल जो है वो पूरी तरीके से स्विच ऑफ करके रखना है,
1: स्विच ऑफ करके।
0: चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने अपने जो बिजी शेड्यूल से समय निकाला ये भी एक बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। आप जैसे श्रोता जुड़ते हैं तो कार्यक्रम में 4 चांद लगते हैं, और बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ऐसा है दोस्तों कि आप भी बहुत सारी बातें साझा करना चाहते होंगे डिजिटल डिटॉक्स पर, तो बिल्कुल कीजिएगा, नंबर मिलाइए 2243-7912, और मैं बिल्कुल तैयार बैठी हूं आपकी बातें को सुनने के लिए और आप सभी तक पहुंचाने के लिए। तो चलिए अगला गाना सुनते हैं, धिंगतारा धिंगतारा फिल्म हम आपके दिल में रहते हैं। इस फिल्म से सोनू निगम, हेमा सरदेसाई और राहुल सेठ की आवाज में, समीर ने इसे कलमबद्ध किया है और संगीतबद्ध किया है अनु मलिक ने।
2: He's got style, he walks in style, he talks in style. He's got style, he's got style, he's the man.

0: हमारे साथ 107 एफएम रेनबो कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप में कोई हमारे कॉल फ्रेंड जुड़े हैं, देखते हैं कौन है। हेलो,
1: हेलो,
0: आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?

0: जी नमस्ते, मैं पीयूष कुमार बोल रहा हूँ। मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ।
1: कश्मीर से बोल रहे हैं तो वाकई में हमारा जो कनेक्शन हुआ है वो डायरेक्ट जन्नत से हो गया है ना। कहते हैं कि कश्मीर को हम जन्नत मानते हैं, इतनी खूबसूरती है वहां के वादियों में कि शायद शब्दों में बयां करें तो वो बहुत कम पड़ जाएंगी। तो पीयूष आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब ये बताइए कि आप मतलब करते क्या है?
0: मैं यहाँ एक्चुअली मैं पीएचडी स्टूडेंट हूँ, पीएचडी एग्रीकल्चर से कर रहा हूँ, प्लांट पैथोलॉजी सब्जेक्ट से
1: जी।
0: और तो हमारे सारे जो काम होते हैं वो बेसिकली किसान के लिए समर्पित रहते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर से जो होते हैं उनमें मैनेजमेंट डिजीज वगैरह का उन सेक्टर पे हम लोगों की पढ़ाई होती है।
1: अच्छा, मैं ये कह सकती हूँ कि हाँ मैं भारत के एक अपकमिंग साइंटिस्ट से बात कर रही हूँ।
0: जी जी जी, आप ऐसा कह सकती है।
1: और हमारा जो विषय है वो भी साइंस से रिलेटेड ही है कि आज का जो विषय है वो है डिजिटल डिटॉक्स। और आज के दौर में डिजिटल डिटॉक्स क्यों जरूरी है?
0: बेसिकली देखा जाए तो डिजिटल डिटॉक्स में तो मेनली देखा जाए तो हमारे सबसे ज्यादा ये जितने भी स्क्रीन देखो, चाहे आप टीवी स्क्रीन हो गई, लैपटॉप हो गई या फोन हो गई, इन सब की बेसिकली कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ पे डायरेक्ट इफेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट दोनों शामिल है। डायरेक्ट इफेक्ट बहुत सारे लोगों को आजकल आप देख सकते हो कि बहुत लोग बोलते रहते हैं कि हमें माइग्रेन है, हमें आंखों से पानी आती है, आंखों में जलन होती है, सुबह उठते हैं तो आंखें लाल रहती है। ये सब बेसिकली फोन चलाने से या ज्यादा टाइम आप मूवी देख रहे हो या ज्यादा टाइम आप लैपटॉप पे काम कर रहे हो, जिसके कारण कहीं ना कहीं आपको सर दर्द होते हैं और इनका साइड इफेक्ट आपको देखता है, आपके हेल्थ पे इफेक्ट शो होना शुरू हो जाता है।
1: तो अगर अगर हम कहें कि हम डिजिटल डिटॉक्स करते हैं तो हमारे हेल्थ के लिए वो बहुत फायदेमंद होगा, राइट? स्पेसिफिकली अगर मैं कहूं तो हमारे आंखों को बहुत आराम पहुंचेगा, सुकून पहुंचेगा और रातों को हमारी नींद भी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि अगर नींद अच्छी नहीं होती है तो अगले दिन जो है ना आप अपने पूरे अच्छे रिफ्रेश मूड में नहीं रहते हैं। यानी कि अगर हम कहें कि हर रोज हम कुछ समय के लिए ऐसा करें कि हम अपने मोबाइल को अपने से दूर रखें या स्क्रीन टाइम जो है वो हम कम कर दें और फिक्स कर दें कि हाँ 2 घंटे या 3 घंटे या आधा घंटा या फिर हर 3 घंटे पर आधा घंटा या 15 मिनट हम जो है उसे स्विच ऑफ करके रखें।
0: हाँ, ट्राई जितना रहे कि फोन से इतना दूरी बना रखे। वैसे भी तो देखने के लिए आजकल बहुत सारे चीज है, आप प्रकृति का आनंद उठाए, लुप्त उठाए। अब आजकल की बच्चों की खामी हो गई कि कहीं भी जाते हैं कुछ भी चीज देखते हैं उनको भी रिकॉर्ड करते हैं। भाई जो चीज देखने की है, जीने की चीज है, आप उस पल को जिए। रिकॉर्डिंग आप करें वो अच्छी बात है, बट उनको बार बार मोबाइल के स्क्रीन के थ्रू देखना एक वो भी व्यू को उतना अच्छा नहीं दिखा पाती है। तो जितना आप कम कर सके उतने आपके
1: मतलब अगर आपको प्रकृति की खूबसूरती को कैद करना है तो अपने आंखों में कैद करके रखिए ताकि आपके मतलब दिमाग में और दिलो दिमाग में वो तस्वीरें बैठ जाए, है ना, आपकी यादों के गलियारे में उसे बड़े खूबसूरती के साथ समेट कर रख ले। चलिए, बहुत अच्छी बात कही आपने और विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप एक अपकमिंग साइंटिस्ट होने वाले हमारे देश के, और अगर मैं कहूँ जूनियर साइंटिस्ट तो ये भी गलत नहीं होगा। बहुत अच्छा लगा पीयूष कुमार आपसे बात करके, आप जुड़े कश्मीर से, ये और भी अच्छी बात है। और अब आपको धन्यवाद कहूंगी मैं, और समय मिले तो जरूर जुड़ा कीजिएगा।
0: ओके मैम, थैंक यू सो मच।

0: चुटकी नुस्खे।
1: एक चुटकी नुस्खे में आज आपकी आजी फ्रेंड सुलक्षणा पर्वत आपसे ये बताना चाहेगी, कहना चाहेगी कि जिन्हें स्टोन की प्रॉब्लम है, किडनी स्टोन में हो, गॉल ब्लैडर स्टोन हो, तो ऐसा मतलब आयुर्वेद में कहा जाता है कि अगर जामुन के बीए को आप सुखा के उसका मतलब पाउडर बना ले और उसे पानी में घोलकर या फिर दही में मिला के थोड़ा सा जो है अगर आप लेते हैं तो वो किडनी स्टोन के प्रॉब्लम से निजात दिलाता है, यानी कि वो पत्थर जो है वो गलकर निकल जाता है। और क्या है कि इसमें किसी आयुर्वेदा आचार्य से पहले आप बात कर लीजिए और उसके बाद इसकी शुरुआत कीजिए और आपको इस समस्या से मुक्ति मिल जाएगी।
0: एक चुटकी नुस्खे।
1: ऐसा है दोस्तों कि ये बहुत बड़ी एक समस्या हो गई है, ये स्क्रीन के सामने लगे रहना। अब अगर बहुत जरूरी है तो मैं ये नहीं कहूंगी कि हाँ आप छोड़ दीजिए, लेकिन मैंने ज्यादातर घरों में देखा है कि ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, जब इन्हें खिलाने बैठो तो वो कहते हैं कि पहले मोबाइल में कुछ चालू कर दो मैं देखूं। टीवी पे अगर आप दिखाते हैं तो वो इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, लेकिन मोबाइल वो सामने रखकर एकदम नजदीक रखकर वो कुछ ना कुछ उसमें देखते रहेंगे और तभी वो दो चार निवाला खाना खाएंगे। और जो सबसे बड़ी इसमें समस्या है कि कहा जाता है कि जब आप खाना खाएं तो सिर्फ खाने पर ध्यान रहे और किसी और चीज पर नहीं। लेकिन अगर बच्चों में ये लत लग गई है तो मैं सभी माताओं से गुजारिश करूंगी कि इसके लिए कुछ आप सोचें कि हाँ इस चीज से बच्चों को कैसे निजात दिलाया जाए। इसमें आपको भी अपने माइंड में इनोवेटिव आइडियाज लाने पड़ेंगे ताकि बच्चों को इस समस्या से आप ही बचा सकते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और अब स्टूडियो की घड़ी इशारा कर रही है और कह रही है कि सुलक्षणा ऐसा है कि मैं जानती हूँ, मतलब समझ रही हूँ कि आप जो है अभी जाना नहीं चाहती, लेकिन क्या है आना जाना तो लगा रहेगा और ये मतलब ऐसा एक नियम है कि अगर हम जाएंगे नहीं तो वापस कैसे आएंगे। वैसे मैं बता दूं कि अभी मैं जाऊंगी लेकिन फिर किसी रोज आऊंगी आपसे मुलाकात करने किसी ना किसी कार्यक्रम में। और चलते चलते यही आप सभी से निवेदन कर रही हूं, गुजारिश कर रही हूं, रिक्वेस्ट कर रही हूं कि किसी ना किसी तरह डिजिटल डिटॉक्स पर फोकस कीजिए, क्योंकि इससे आपकी

बड़ी खूबसूरत बन जाएगी। और चलते चलते यही कहूंगी, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और चारों तरफ खुशियों के फूल बिखेरते रहिए। और अगला गाना आमिर जमाल की आवाज में फ्रॉम द मूवी मर्डर, इस गीत को सुनते सुनते आगे दीजिए सुलक्षणा पर्वत को। आपका दिन मंगलमय हो।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो म्यूजिकल योर 107 एफएम रेनबो, दिल से दिल तक के तार हम जोड़ते आ रहे हैं। जी हाँ, वेलकम टू तीन का तड़का। मैं आपके साथ आपका रेडियो वाला, मैं अमर, हमेशा की तरह।
1: बारिश की बूंद में
2: मन की बात है, जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय

0: के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: লিসন না, আমাকে খুব জলদি কিছু জিনিস পাঠাতে হবে, কোন সুপার ফাস্ট অপশন আছে নাকি?
2: আরে ভাই একদম, ইন্ডিয়া পোস্ট নিয়ে এসেছে 24 স্পিড পোস্ট, মানে পরের দিনই নিশ্চিত ডেলিভারি।
1: তাই নাকি? মানে দরকারি ডকুমেন্ট থেকে পার্সেল বা যে কোনো জরুরি জিনিস সবকিছু এত তাড়াতাড়ি পৌঁছে যাবে?
2: আরে হ্যাঁ ভাই, রয়েছে রিয়েল টাইম ট্র্যাকিং, পকেট ফ্রেন্ডলি রেট আর সবচেয়ে জরুরি OTP ভিত্তিক নিরাপদ ডেলিভারি। শুধু ভরসা রাখো ইন্ডিয়া পোস্টের উপর।
3: বিশদে জানতে আপনার কাছের পোস্ট অফিসে যোগাযোগ করুন বা ভিজিট করুন indiapost.gov.in।
4: গানে জো লগায়ে এন্টারটেইনমেন্ট কা তড়কা, আপ সুন রহে হ্যায় তিন কা তড়কা, তিন কা তড়কা, তিন কা তড়কা, বারো 7 FM রেইনবো পর, তিন কা তড়কা, তিন কা তড়কা, তিন কা তড়কা, বারো 7 FM রেইনবো পর, রেইনবো পর।
5: जी हाँ, इससे पहले कि सफर शुरू करें तीन का तड़का, सबसे पहले परियोजना प्रस्तुति। प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही एक प्रमुख कल्याणकारी योजना है, जिसका उद्देश्य देश के आर्थिक रूप से कमजोर और निम्न आय वाले परिवारों को पक्के घर उपलब्ध कराना है। यह योजना मुख्य रूप से दो भागों, शहरी और ग्रामीण में बंटी हुई है। इसके तहत झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, कम आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग को शामिल किया जाता है। इसमें होम लोन पर ब्याज पर सब्सिडी, जैसे 6 लाख तक के लोन पर 6.5% तक की सब्सिडी या घर बनाने के लिए 2.5 लाख तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में आवासहीन परिवार

जी हाँ, कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में आपने सुना फिल्म जीना मरना तेरे संग के इस गीत को। 90s का एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म थी ये। और तीन का तड़का, तो तीन के तड़के में आज हम बात करेंगे भारतीय सिनेमा के सबसे खूंखार विलेन, जैसे जिनका नाम मोगैम्बो भी था, आप समझ गए होंगे, यानी कि अमरीश पुरी, जिनका कल जन्मदिन था। जी हाँ दोस्तों, 22 जून 1932 को उनका जन्म हुआ था। भारतीय सिनेमा के सबसे महान और प्रतिष्ठित अभिनेताओं में से एक थे वो। अपने 4 दशक के करियर में उन्होंने 450 से अधिक फिल्मों में काम किया। अपने बुलंद आवाज़ और दमदार अभिनय के लिए मशहूर और एक सख्त लेकिन प्यारे पिता के किरदारों के लिए भी जिन्हें जाना जाता है, पर मेनली यानी कि असल रूप में उन्हें एक खूंखार विलेन के लिए ही जाना जाता है। हालांकि काफ़ी पॉजिटिव रोल्स भी उन्होंने किए हैं।

0: श्रोताओं, अगले 3-4 घंटे में कोलकाता, हावड़ा, हुगली, नदिया, उत्तरी तथा दक्षिण 24 परगना में मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी दी जाती है। साथ ही 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी की भी आशंका जताई जाती है।
1: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं 3 का तड़का 107 FM रेनबो पर। 3 का तड़का 107 FM रेनबो पर।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
0: आप सभी श्रोताओं को आपके साथी अजीत का नमस्कार, जोहार, जय हिंद। श्रोताओं, आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार जो हमें भेजा है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। लिखते हैं, गांव की मिट्टी में वो ताकत है जो इंसान को अपनी भाषा, संस्कृति और जड़ों से जोड़े रखती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुविचार के लिए। तो आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का, यवतमाल महाराष्ट्र से क्षितिज संदीप कोल्हे, गांव गणेशधाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलाऊ दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी, और तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान। बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए। आपसे यही निवेदन रहेगा हमारा कि इसी तरह से बने रहिए उमंग कार्यक्रम के साथ। स्वागत है एक बार फिर से, और आइए अब चलते हैं हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओं, पिछले सप्ताह हमने चर्चा की थी भारत की विभिन्न झीलों के बारे में, याद है ना। हमने बात की थी मणिपुर की अनोखी झील लोकटक, हिमालय की सुरम्य वादियों में बसी मानसरोवर झील, ओडिशा की चिल्का झील और कश्मीर की डल झील की। आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी। तो आइए अब चलते हैं आज की चर्चा में। श्रोताओं, इस सप्ताह उमंग कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको ले चलेंगे भारत के विचित्र, रहस्यमयी और अनूठी गुफाओं में। सचमुच बड़ा ज्ञानवर्धक और मनोरंजक होगा उनके बारे में जानना, है ना। लेकिन पहले आपको ये तो बता दें कि हम गुफा को भौगोलिक रूप से परिभाषित कैसे करेंगे। तो आइए सुनते हैं इसकी परिभाषा। श्रोताओं, आम बोलचाल की भाषा में हम झील, पर्वत, लगून, मानसून जैसे शब्दों को तो कह देते हैं, लेकिन सही मायनों में उसकी परिभाषा वैज्ञानिक रूप से नहीं जानते। श्रोताओं, गुफा पृथ्वी की सतह के नीचे या अंदर प्राकृतिक रूप से बनी हुई खोखली जगह को कहते हैं। अगर आप पूछें कि इसे सरल शब्दों में कैसे कहें, तो आपको बता दूं कि धरती या पर्वत या समुद्र के भीतर प्राकृतिक रूप से बनी खोखली जगह को गुफा कहते हैं। हाँ, ये कभी कभी मानव निर्मित भी हो सकती है। तो आइए अब आते हैं आज के विषय पर। आज हम चर्चा करेंगे भारत की एक अद्भुत गुफा की, जिसे हम भीम बैठका गुफा के नाम से जानते हैं। श्रोताओं, इस नाम के पीछे एक बड़ी दिलचस्प पौराणिक कथा है। ऐसा कहते हैं कि यह नाम महाभारत के भीम से जुड़ा है। ऐसी मान्यता है कि भीम इस स्थान पर रुके थे, भीम बैठका यानी भीम के बैठने की जगह। इस गुफा को भीम की आश्रय स्थली भी कहा जाता है। सचमुच ये बड़ी रोचक बात है, इस गुफा को भीम की आश्रय स्थली भी कहा जाता है। तो आइए श्रोताओं, अब जानते हैं कि भीम बैठका की गुफा है कहाँ। तो आपको बता दें, ये जगह मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में है, जो राजधानी भोपाल से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है। ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में पड़ती है। ये अत्यंत प्राचीन गुफाएं हैं। लेकिन अब एक और प्रश्न मेरे मन में आता है, आपके मन में भी आ रहा होगा, और वो प्रश्न ये है कि भीम बैठका की गुफाओं का पता कैसे चला। तो श्रोताओं, इसके पीछे

0: मनोरंजक किस्सा है। वहां के स्थानीय लोग तो इन गुफाओं के बारे में जानते थे, लेकिन इसका पता विश्व को तब चला जब डॉक्टर विष्णु वाकणकर ने इसके बारे में प्रामाणिक ढंग से जानकारी दी। तो आइए जानते हैं कैसे पता चला डॉक्टर विष्णु वाकणकर जी को। तो आपको बता दें कि डॉक्टर विष्णु वाकणकर एक जाने माने पुरातत्वविद रहे हैं। वर्ष था 1956। एक बार वे ट्रेन से भोपाल से इटारसी जा रहे थे। ट्रेन विंध्य पर्वतमाला से होकर जा रही थी। श्रोताओं, यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो डॉक्टर विष्णु वाकणकर को जरूर याद रखिएगा। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। जी, तो मैं आपको बता रहा था कि वे ट्रेन से भोपाल से इटारसी जा रहे थे। तो ऐसा हुआ कि उन्होंने ट्रेन की खिड़की से कुछ ऐसी चट्टानों और पहाड़ियों को देखा जो बड़ी कलात्मक लगी। वे दूसरी चट्टानों से भिन्न थीं। वे उन्हें अपनी फ्रांस और स्पेन की यात्रा के दौरान देखी गई प्रागैतिहासिक शैल चित्रों वाली चट्टानों जैसी लगी। तो फिर क्या था, वे उतर गए अगले स्टेशन पर और उस स्थान पर पहुंचे। बाद में उन्होंने बताया कि पहली गुफा में घुसते ही वे आश्चर्यचकित रह गए जब उन्होंने वहां बहुत सारे शैल चित्र यानी पत्थरों पर बने चित्र देख लिए, जिन्हें हम रॉक पेंटिंग्स कहते हैं। जी हाँ श्रोताओ, इन गुफाओं में 30,000 वर्ष तक पुराने शैल चित्र हैं जो पुरापाषाण युग से मध्यकाल तक की झांकी प्रस्तुत करते हैं। इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए डॉक्टर विष्णु वाकणकर को सन 1975 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया और वर्ष 2003 जुलाई में यूनेस्को ने भीम बैठका की गुफाओं को विश्व धरोहर घोषित किया। ये खोज पुरातत्व और मानव अध्ययन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे ये साबित हुआ कि भारत में मानव सभ्यता कितनी प्राचीन और निरंतर है। तो आइए श्रोताओं, आप जानते हैं कि इन गुफाओं में क्या ऐसी बात है जो इसे खास बनाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह भारत का सबसे पुराना ज्ञात मानव आवास है, जिसमें 600 से भी अधिक शैलाश्रय या रॉक शेल्टर्स हैं। ये प्रकृति द्वारा बने आवास हैं। इन गुफाओं में शिकार, सामूहिक नृत्य, युद्ध, पशु पक्षी और प्रारंभिक मानव की रोजमर्रा की जिंदगी के चित्र हैं। श्रोताओं, इन चित्रों में गेरुआ, लाल, सफेद, पीले और हरे रंगों का इस्तेमाल हुआ है। ये रंग वनस्पति से बने हैं, इसलिए हजारों वर्षों बाद भी ये टिके हुए हैं। अगस्त 1990 में भारत सरकार द्वारा इसे राष्ट्रीय महत्व का स्थान घोषित किया गया। ये वो जगह है श्रोताओं, जहां संभवतः आदि मानव ने पहली बार पत्थरों की दीवारों को कैनवस बनाया। हम भीम बैठका की गुफाओं को भारत के इतिहास की पहली चित्र गैलरी भी कह सकते हैं। तो श्रोताओं, भीम बैठका की गुफाएं सचमुच अद्भुत हैं। अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। आज का प्रश्न है, भीम बैठका की गुफाओं की खोज किस पुरातत्वविद ने की। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, भीम बैठका की गुफाओं की खोज किस पुरातत्वविद ने की। 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@cieet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन दोनों पतों पर हमारे प्रश्नों के उत्तर और अपने संदेश भेज सकते हैं। अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम संकल्प की धनी वसंती। श्रोताओं, ये कार्यक्रम एक महान पर्यावरण नेत्री वसंती के जीवन और पर्यावरण के संरक्षण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में एक नाटक के द्वारा मनोरंजक ढंग से जानकारी देता है।
1: दोस्तों, कभी सोचा है तुमने कि हमारी सभ्यताओं को किसने पाला पोसा है, किसने संवारी है हमारी दुनिया, मां की गोद ने और नदियों की घाटियों में। हजारों हजारों साल से मां ने हमें सीने से लगाया, हमें जीवन दिया है। यही तो है नदी, जिसने हमारी सभ्यता को सींचा और हरा भरा किया है।

नदी मनुष्य के साथ रही है, उसकी हर हंसी हर आंसू में। वो हम सफर रही है मनुष्य के हर सफर में। तभी तो हर सभ्यता ने नदी को माँ कहा है।

लेकिन कभी कभी मनुष्य अपनी नासमझी और नादानी में जीवन देने वाली इस माँ के जीवन को ही खतरे में डाल देता है। उत्तराखंड की एक बहुत खास नदी कोसी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ।

0: लेकिन भारत देश की महिलाएं अपनी प्रकृति की रक्षा के लिए हमेशा ही तैनात रही हैं। 1972 में चिपको आंदोलन की शुरुआत कर अपने जंगलों को बचाने वाली गांव की ही एक अनपढ़ 50 वर्षीय बाल विधवा गौरा देवी थी।
1: और इस बार भी कोसी की रक्षा के लिए एक महिला ही आगे आई। हाँ, आज की हमारी नायिका बसंती बहन ने कोसी को बचाया।
0: भला क्यों बचाया बसंती ने कोसी को? क्या नाता है कोसी और बसंती का? आखिर ये बसंती है कौन? ये बसंती भी कुछ खास ही है कोसी की तरह। दोनों ही हिमालय के ऊंचे शिखरों से ही नहीं बल्कि घने जंगलों से निकली हैं। आइए जानते हैं कि उनके बीच कैसे बनता है एक गहरा नाता और कैसे बचाती हैं वे एक दूसरे को।
1: ये कहानी है उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के एक छोटे से गांव की।

0: सन 1980 अप्रैल का एक दिन,
1: बसंती। अरे बसी, ओ बसी, कहाँ है तू?
2: अरे बुआ, क्यों चिल्ला रही हो? मैं यहाँ बुरांस के फूल चुन रही हूँ।
1: अरे क्या करेगी इनका तू? है
2: क्या करूँगी? गमकुआ इतर बनाऊंगी। क्या तुम्हें पता नहीं कि इससे शरबत बनता है? तो शरबत बनाऊंगी।
1: अरे बसी, तू बिल्कुल बावरी है। अरे चार रोज बाद तेरा ब्याह है और आज जंगल में बुरांस के फूल चुन रही है। हा? चल घर चल। अरे चल, सब खोज रहे हैं तुझे। अरे चल ना, जल्दी कर।

0: अभी तो उसने ठीक से अपने गुड्डे गुड़िया का भी ब्याह नहीं रचाया था, और उस छोटी सी गुड़िया का ब्याह हो गया।
1: शादी के लगभग 2 साल बाद एक रोज शाम के समय सर पर लकड़ियों का गट्ठर उठाए जब बसंती घर पहुंची तो घर का नजारा बिल्कुल बदला हुआ था।
0: सारा गांव उसके घर में इकट्ठा था और बहुत तेज रोना धोना मचा था। बसंती को कुछ समझ में आता, इससे पहले ही मां उसकी ओर तेजी से आई और गले लगाकर रोने लगी।
2: अरे बसंती, बेटी तू बर्बाद हो गई, तेरी दुनिया हमेशा के लिए

0: और इस तरह इससे पहले कि बसंती ब्याह के मायने समझती, वो विधवा हो गई। वक्त ने धीरे धीरे उसे विधवा होने का मतलब भी समझा दिया। पिता को अपनी मासूम बच्ची के भविष्य की चिंता सता रही थी, लेकिन नियति ने तो उसके लिए कुछ और ही संयोग रच रखा था। बसंती के पिता को उनके एक मित्र से कौसानी के लक्ष्मी आश्रम के बारे में पता चला।
1: आजादी के पहले गांधी जी की शिष्या सरला बहन ने इस आश्रम की शुरुआत पहाड़ की बच्चियों को शिक्षित करने के लिए की थी। बाद में ये आश्रम उन महिलाओं के लिए जीवन की शाला बना जिन्हें दुनिया विधवा कहकर बेसहारा समझती है। वही महिलाएं दक्ष होकर आज समाज का सहारा बन रही हैं।
0: ये सोचकर कि बसंती का भविष्य सबसे ज्यादा आश्रम में ही सुरक्षित रहेगा, बसंती के पिता ने बसंती को इसी आश्रम में भेज दिया।
1: घर से आश्रम की यात्रा बसंती के लिए एक जीवन से दूसरे जीवन में प्रवेश की यात्रा बन गई। जीवन के 12 बसंतों ने ही उसे एक चहकती बालिका से विधवा और फिर आश्रमवासी बना दिया।
0: ये तो थी कहानी बसंती की, पर बसंती का आखिर क्या नाता है कोसी से? है ना, बहुत गहरा नाता है। उस रोज जब बसंती पहली बार अपने पिता के साथ आश्रम जा रही थी, तो उसे लगा कि ये उसकी जिंदगी की अंतिम यात्रा है। मगर उसी रास्ते में उसकी भेंट कोसी नदी से हुई।

0: हुआ यूं कि कोसानी जाते हुए मन्नान में बस दोपहर के भोजन के लिए कोसी नदी के निकट रुकी तो उदास बसंती भोजन करने के बजाय कोसी के किनारे जाकर बैठ गई।
1: थोड़ी देर बाद उसे कोसी के निर्मल जल से आवाज आई। मानो कह रही हो, बेटी बसंती, तू उदास मत हो, ये यात्रा तुम्हारे जीवन की अद्भुत यात्रा साबित होगी। इस यात्रा से तुम अपने जीवन को मायने दे सको, तुम अपने जीवन को मायने दे सको।
0: बसंती घबराकर इधर उधर देखने लगी, पर कहीं कोई नहीं था। फिर ये आवाज किसकी थी? बसंती ने पानी में झांका तो उसे अपनी ही छवि दिखाई दी। अब तक उसकी आंखों से आंसू छलकने बंद हो चुके थे और चेहरे पर संशय की जगह विश्वास अपनी जड़ जमाने लगा था।
1: उसके बाद से बसंती को जब भी बड़े

0: सवाल सालते, वो कोसी के किनारे चुपचाप अकेले और उसे जवाब मिल जाता। दरअसल कोसी उसकी अंतरात्मा की परछाई बन चुकी थी।
1: साल पर साल गुजरते गए। बसंती अपने सामाजिक कार्यों में मगन रही और कोसी भी अपनी जल तरंगों से घाटी को हरा भरा करती रही।

0: लेकिन लोगों की नादानी से कोसी की रस धाराएं तेजी से सूखने लगीं। और एक दिन ऐसा भी आया कि उत्तराखंड की सरकार ने कोसी पर पहरा लगा दिया। ये बात सन 2003 की गर्मियों की है।
1: बसंती दीदी, ओ बसी दी, कहाँ हो? गजब हो गया, कुछ सुना तुमने? दीदी,
2: अरे
1: दीदी,
2: क्या हुआ शांति? क्यों सारा पहाड़ सर पर उठा रखा है? मैं यहाँ गौशाले में हूँ, घास काट रही हूँ।
1: दीदी दीदी, अभी अभी मैं नीचे गांव से आ रही थी, वहाँ सरकार ने कोसी पर जगह जगह पुलिस बैठा दी है।
2: क्या?
1: सरकार का हुक्म है कि खेती के लिए कोई भी कोसी का बूंद भर पानी भी इस्तेमाल न करे।
2: अरे ऐसे कैसे हो जाएगा? कोसी हमारी है या सरकार की?
1: कहते हैं कि कोसी का पानी बहुत तेजी से घट रहा है, इसलिए सारा पानी अल्मोड़ा शहर जाएगा। वहाँ पीने का पानी हमारी कोसी से ही तो मिलता है ना।
2: अच्छा चल, आश्रम चलकर सबको इसकी खबर देते हैं।
1: ठीक है, चल ठीक है दीदी, चलो चलो।
3: उस रोज रात को कोसी नदी के बारे में आश्रम में भोजन के बाद चर्चा हुई।
4: हाँ, बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब इसका तो उपाय क्या है, क्या करें? हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, मेरी तो ऐसा है, हम सबको मिलजुल के कुछ करना चाहिए।
3: कोसी नदी को बचाने की जिम्मेदारी आश्रम की बड़ी दीदी राधा भट्ट ने बसंती को सौंपी।

0: अब हम लौटते हैं लक्ष्मी आश्रम की ओर, जहां सुबह सवेरे झोला लेकर बसंती बहन गांव का रुख कर रही है। ऐसा करते हुए उन्हें 45 दिन हो चुके हैं। वो रोज सुबह 6 बजे बरासे घाटी के गांव की ओर चल पड़ती हैं। शुरू में कोई उनकी बात को सुनने समझने को तैयार नहीं था। एक दिन बसंती को महिलाओं का एक झुंड मिला। सभी के हाथों में रस्सी और दराती थी। वे सब बहुत तेजी से जंगल की ओर जा रही थी। बसंती दीदी समझ गईं कि ये सब लेसाल गांव की महिलाएं हैं और जंगल में लकड़ी काटने जा रही हैं। बसंती दीदी ने उन्हें पुकारा।
1: अरे कहाँ जा रही हो बहनों? क्या तुम सब लेसाल गांव की हो?
2: हाँ, हम सब लेसाल गांव की हैं और जंगल जा रहे हैं लकड़ियाँ काटने।
1: बहन जरूर जाओ, लकड़ी भी लाओ, लेकिन देखो कच्ची लकड़ियाँ मत काटना।
3: वो भला क्यों?

0: क्या कोई यहाँ की कलेक्टर लगी हो जो हमें ये फरमान सुना रही हो? अरे हम क्यों तुम्हारी बातें सुने? हाँ
1: मेरे लिए नहीं, अपने कोसी के प्राण बचाने के लिए आप सबको मेरी बात माननी चाहिए।
2: तुम्हारी बात से कोसी के प्राण का क्या रिश्ता?
0: हाँ।
2: हमें क्यों मूर्ख बना रही हो?
0: और क्या
2: है, आखिर तुम कौन हो, क्या चाहती हो?
0: हाँ?
1: आमा मैं लक्ष्मी आश्रम से आई हूँ। आप सबने तो सुना ही होगा कि इस बार कोसी के पानी पर सरकार ने पहरा लगा दिया है। गांव का कोई आदमी कोसी के पानी का इस्तेमाल सिंचाई के लिए नहीं कर सकता। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम मिलकर कोसी को बचाएं। यही बात समझाने के लिए मैं गांव-गांव घूम रही हूँ।
2: तुम्हारी बात में दम तो है बेटा, पर कोसी को हम कैसे बचा सकते हैं?
1: आमा इसका जवाब तेरे पास है।
2: मेरे पास?
1: हाँ तेरे पास। आमा तुम इन सबको बताओ कि कोसी नदी बनी कैसे है।
2: कोसी बनी कैसे, ये कैसा सवाल है? क्या तुम नहीं जानती कि हमारे पेनाथ जंगल के बांज बुरांश के घने पेड़ प्राकृतिक जल को संचित करते हैं और उसी से कोसी का जन्म हुआ?
0: और क्या
2: है?
1: बिल्कुल ठीक। ऐसे में अगर हम जंगल काटेंगे तो कोसी में पानी घटेगा या बढ़ेगा?
0: घटेगा।
2: अब हमें तुम्हारी बात समझ में आ गई। खाली हमारे समझने से क्या होता है, हम अकेले क्या कर सके हैं?
1: हम गांव के बाकी लोगों को ये बात समझा कर अपने जंगल के पेड़ों की जिम्मेदारी स्वयं कर सकते हैं।
2: चलो इसकी शुरुआत हमारे ही गांव से करो।
0: अरे चलो चलो बसंती बहन, हमारे गांव चलो
3: चलो चलो
0: चलो। हाँ जल्दी चलो, हम सबको बताते हैं।

और इन औरतों का काफिला एक बार जो चल पड़ा तो रुका नहीं। इस दिन बसंती बहन लेसाल गांव गई और वहां औरतों ने एक सभा बुलाई और झटपट एक महिला मंडल का गठन हो गया। फिर धीरे धीरे 20 गांव में महिला मंडल का गठन हो गया। बरासे घाटी के कफारी, बिजुरिया, धौलरा, गरुड़ा, सैल, खीराकोटा, कांटली आदि गांव में महिला मंडल का गठन हो गया।

0: शुरू में तो पुरुषों ने महिला मंडल का विरोध किया, लेकिन धीरे धीरे उन्हें भी बात समझ में आ गई और वे भी अपना जंगल बचाने के अभियान में लग गए। अगस्त 2003 से आज तक इन गांव के लोगों ने कच्ची लकड़ी और हरी पत्तियां नहीं काटी।
1: पर रास्ता इतना आसान भी नहीं था। कोसी की जीवन रेखा पिनाथ जंगल केवल बरारो घाटी में नहीं पड़ता था, उसका कुछ हिस्सा लोध घाटी और बागेश्वर में भी पड़ता था, और वहां के लोग अब भी जंगल काट रहे थे। तब बरारो घाटी के महिला मंडलों ने फैसला किया कि पूरे इलाके में कोसी बचाओ जुलूस निकाले जाएं, सभाएं की जाएं।

बसंती बहन और गांव की संकल्प की धनी जुझारू महिलाओं ने यह साबित कर दिया है कि अगर आप ठान लें तो सब कुछ संभव है। उत्तराखंड की धरती ऐसी ही साहसी महिलाओं की धरती रही है और उसी परंपरा को आगे बढ़ा

0: ना कार्यक्रम संकल्प की धनी बसंती। और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें,

स्टूडियो के घड़ी में शाम के ठीक 6:07:18 आपके साथ हूं मैं आपका दोस्त, मैं आपका रेडियो वाला, मैं अमर, लेकर प्रोग्राम छाया लोक प्यार भरे नगमे। आज का आपका और हमारा सफर ठीक 9 बजे रात तक

समय का ये पल काश यूं ही थम जाता, आप और हम होते साथ साथ हमेशा। पर काल का नियम कुछ और ही चाहता है दोस्तों, जो आता है वो जाता है, आने जाने का सिलसिला चला आ रहा है सदियों से, युगों से, सिलसिला ये चलता रहेगा, बस चाहत के पल यूं ही रह जाएंगे। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो।

प्यार और अपनापन सिर्फ एहसास नहीं बल्कि ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत सुकून है दोस्तों। ये वो जज्बात है जो किसी अपने के होने का एहसास दिलाती है।

तेरे करीब आने से जिंदगी में बहार आ गई, तेरी हर बात में जैसे कोई अपनी सी खुशी समा गई। अब कोई फिक्र नहीं इस दुनिया की, अब कोई फिक्र नहीं इस दुनिया की, जब से तेरी चाहत मेरी रूह तक छा गई।

107 AIRFM रेनबो, दिल से दिल तक प्यार भरे नगमे आपके साथ, आपका रेडियो वाला। जी हाँ, मैं अमर एक बार फिर आपके साथ हूँ और रहूँगा आपसे ठीक 9 बजे तक। जी हाँ, तुम लाख छुपाओ सीने में एहसास हमारी चाहत का, तुम लाख छुपाओ सीने में एहसास हमारी चाहत का, दिल जब भी तुम्हारा धड़का है आवाज़ यहाँ तक आई है। हर पल के रिश्ते का वादा है तुमसे, अपनापन कुछ इतना ज़्यादा है तुमसे।

गीत संगीत रोमांस शायरी से थोड़ी देर के लिए बाहर आकर आपसे कहना चाहूँगा कि आज शहर में तेज़ बारिश हुई है दोस्तों, और इसकी वजह से कहीं पानी हो सकती है, कहीं पेड़ गिरे हो सकते हैं। बाइक या फोर व्हीलर चलाने वालों से गुजारिश है कि देखकर सावधानी से और धीरे गाड़ी चलाएं, अपने और अपनों का ख्याल रखें। वन ओ सेवन AIRFM रेनबो, दिल से दिल तक।

चांद रोज छत पर आकर इतराता बहुत था। कल रात मैंने भी उसे तेरी तस्वीर दिखा दी। अजीब सी बेताबी है तेरे बिना, रह भी लेते हैं और रहा भी नहीं जाता।

तेरा नाम लूं जुआ थम जाए, हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। छू लेना कोई जज्बातों से भरी इन आँखों को, बहुत अंदर तक जला देती है वो बातें जो बातों में नहीं होती।

नहीं बदल सकते हम खुद को औरों के हिसाब से, नहीं बदल सकते हम खुद को औरों के हिसाब से, एक लिबास मुझे भी दिया है खुदा ने अपने हिसाब से।

रोज रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़ा हूं, ऐ मुश्किलों देखो मैं तुमसे कितना बड़ा हूं। कहां ले जा रही है जिंदगी मुझे पता नहीं, न जाने किस गली में शाम हो जाए मुझे पता नहीं।

दिल की बात दिल में ही रहने दो, इश्क में हद से गुजर सको तो कहो, दर्द होगा और दवा भी ना होगी, चोट दिल पर सह सको तो कहो। राह आसान नहीं है मोहब्बत की, सितम अपनों के सह सको तो कहो, खुशी के मौके कम ही आएंगे, गम में भी खुश रह सको तो कहो। दिल की बात जुवां तक ना आ पाएगी, बात नजरों से कह सको तो कहो।

और अब आया है वो वक्त जब हम भी अलविदा कहना चाहेंगे, हमें भी अलविदा कहना पड़ेगा, पर फिर मिलेंगे इस वादे के साथ, फिर मिलेंगे क्योंकि मिलना हमारा वादा है हमेशा। आप थे अब तक अपने रेडियो वाला दोस्त अमर के साथ, और प्रोग्राम के अंतिम गीत को सुनते सुनते हम चाहेंगे आपसे विदा।